0: ஒழுக்கம் பால்விவாக்கு கூடாவுதா? தேவையில பகர் விவாகம் மான்யத்தாலே தேரை கிஷோர் கிஷோரிலை பால் விவாக தர்ஃபக்கிலி ரகேக்கு சார்.
1: பால் விவாக ரோக்ன தோஷ் ஹோய்னா, விஸ்வாஸ் ஆவசியக் சார்.
0: छोरा छोरी संग साथी जस्ते संवाद करो बृहत यौनिकता शिक्षा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी उपलब्ध कराओ र कानून को प्रभावकारी कार्यान्वयन करो
1: बाल विवाह रोको छोरा छोरी को सपना जगाओ शिक्षित सक्षम व जिम्मेवार पुस्ता निर्माण करो जनहित का लागि महिला सशक्तिकरण शोध केन्द्र उयासी सामुदायिक रेडियो उदयपुर सीआईएम सामाजिक रूपांतरण का लागि सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएम तपाईं अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएम खबर डट कम तथा मोबाइल एप सीआईएम मात्रै कर्जा विस्तार हुन सकेको हो त्यस्तै पृथ्वी पृष्ठमा रस्वाबारीका कारण हराइरहेका व्यक्तिहरू र संख्याको बारेमा खबर प्रकाशित छ। रस्वाबारी पछि कर्णालीका 216 जना सम्पर्क विहीन छन् भने 31 जना सम्पर्कमा आएका छन्। यसलाई हेमन्त केसीले सुखे

0: मलाई तर्पाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्ती पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा
1: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तर्पाएर
0: सीआरबीटी नम्बर 01300044 29 सीआरबीटी नम्बर 6045 16 52 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत संतोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइल में सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड करें।

पानी जीवन को आधार हो, तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार। हिमालयाज ऑन टॉप लांगटांग हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाई को हाथ में। अंतरराष्ट्रीय स्तर को अत्याधुनिक प्रविधि प्रशोधित ऑन टॉप ब्रांड का पानी 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट होटल में उपलब्ध छ। थप जानकारी का लागि हिमालयज स्प्रिंग वाटर प्राली नया बानेश्वर काठमांडू फोन 4781-171-4780-724 वा हिमालयज वाटर .com.np लॉग इन कर।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.